सिरक सबर की लड़ाई जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नू वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, ऐथों तक आखिया कि तुहानू पीर बना दिता जाएगा। कचहरी लगी हुई है, इस कचहरी दे विच वेखो कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर। बाणी विच महाराज कहते हैं, कूड़ निखुट्टै नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ए। बड़ी कोशिश की थी इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान किया।

कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया, हमेशा मखमल दे गद्यां विच सौण वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए, उम्रां भी बड़ियां छोटियां छोटियां, पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, डराबे दिते, एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या, ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साड़ी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तो तुसी की करोगे? आ वेखो जरा अमृत की शक्ति, उम्र का तकाजा नहीं, अमृत की शक्ति गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा। सूबे नू क्या, पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे, होर सिंघां नू तैयार करांगे अमृत छका करके, फौज तैयार करांगे, ते ओ फौज जदों त्यार बर त्यार होवेगी फिर जुलम दे टाकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे, भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनियां पैण, अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे। इत्थे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि यह गल सुनी तां मलेरकोटले दा नवाब अश अश कर उठिया, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह। लेकिन कोल ही खड़िया सी सुचानंद दीवान, कहन लगा, ए नवाब साहब, सब दे बच्चे हमेशा सब ही हुंदे हैं, इन्हां दा मूंह बाहर कढ़न तो पहला पहला ही सिर फेर दिता जाना चाहिदा है, इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा है। ते फतवा भी की लाया, नीहां दे विच चिण दिओ, जिंदा ही नीहां दे विच चिणवा दिता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, तन उन्हां दी सिखी, तन बख्शिश अमृत दी दात, छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने जिंदा ही नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया, पर सिदक निहारिया, सिदक तो नहीं डोले,

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Move for 10 is here, the new challenge from Disco Can that everyone can join. Move for 10 minutes, 10 times a month. I've got more energy, I feel more confident. I'm sleeping better. From a stretch in the morning to a brisk walk around the park. No pressure, no strict schedule. Just move when it suits you. I've logged 3 sessions already. And I'm feeling good. Women across the country are moving for 10 minutes, 10 times this month. To join, search This Girl Can Move for 10.

0: चिड़िया कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
1: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 PM till late at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926. Official Radio Partner, Sunrise Radio.

0: ड्रॉन्ग के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी जिंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह दोपहर और शाम करते हैं 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। ये आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहत भरा खलूस की अता गहराइयों से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और जुमा की बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा। आपका पिछला हफ्ता और आपका आज का दिन अभी तक खैरियत से गुजर रहा होगा। आप खुशबाश होंगे, आप खैरियत से होंगे, यही मेरी दिली तमन्ना है और दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके साथ जुड़े तमाम खूबसूरत रिश्तों को, आपके बुज़ुर्गों को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों अहबाब को, आपके हमसायों को और आपके जो भी दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, उन सब को अल्लाह पाक हमेशा हमेशा अपनी उन तमाम नेमतों से नवाजे जिनमें सब के लिए खैर बरकत हो, सुकून हो, अमन हो, राहत हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, खुशहाली हो, मोहब्बत हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो, आमीन। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को, हर पल को आफियत खैर आफियत अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपके रिस्क आपके जान माल में बरकत अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी को अल्लाह पाक खुशियों से भर दे और आपको तमाम आफात से महफूज रखे अल्लाह पाक। खुदा ना करे, खुदा ना खौस्ता अगर आप में से आज कोई बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है, तो हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत कामला और आजला अता फरमाए, आपकी परेशानियां दूर फरमा कर आपके लिए आसानियां नसीब करे आपकी ज़िंदगी में और आपको दिली जहनी जिस्मानी और रूहानी सुकून अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। हमारे मिजाज हमारे हाल बिल्कुल ठीक ठाक है। आपकी दुआएं हमें यहाँ लेकर आई हैं, आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। आपकी दुआएं हमें लाती हैं और आपकी दुआएं ही हम लेकर यहाँ से जाते हैं हर हफ्ते। हमारी मुलाकात का दिन जुमे को होता है 11 और 2 के दौरान। पुराने सदाबहार गीत होते हैं, आप होते हैं, हम होते हैं और ये सफ़र हम मिलजुल कर तय करते हैं। आज भी यही होने वाला है, आप आ रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, आप इस सफ़र में हमारे साथ शरीक होंगे, यही उम्मीद और यही यकीन है हमें। इंशाल्लाह आपके साथ साथ ये सफ़र, यादों का सफ़र जो है, और भी खूबसूरत बनाएंगे हम मिलजुल कर। आपकी डेडिकेशंस भी होंगी, आपके पैगामात भी होंगे जो कि आप अपने चहेते तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहेंगे 01274306666 पे। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ रहेगी दोपहर 2 बजे तक। सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और फिर आते हैं आपके पास हवा के दोष में चंद ही लम्हों में।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: Your soundtrack, your time check.
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:15. 15 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर. लेते हैं छोटी सी ब्रेक और आते हैं थोड़ी देर में.

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

तो है सांवरिया ना ही खबरिया, तो है कारण अपने ही देश में हम हो गए परदेसी। बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और 100.6 FM पे। आप सुनते हैं काल द टेल और वेस्ट यॉर्कशायर के इर्द गिर्द के इलाकों में DAB के जरिए आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड, कीसली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी। और बहुत से तरीके हैं सनराइज रेडियो को सुनने के। एप्पल स्टोर के जरिए और गूगल प्ले स्टोर पर भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सनराइज की वेबसाइट है www.sunriseradio.f, उस पर भी जब चाहें जहां चाहें हमें सुन सकते हैं 24 घंटे सनराइज रेडियो की नशरियात को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अपने भाइयों से, बहनों से मिलकर, आपके मैसेजेस पाकर, आपकी खैरियत जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा कि आप ठीक ठाक हैं। ढेरों दुआएं आप सबके लिए। और सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा, आपके पैगाम और आपकी सलाम और दुआ जो है वो आपके चहेतों तक हम पहुँचाएँगे। फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो कि मुझे सुनवाना है आपको। बहुत दिनों से नहीं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में है। अजी सुनिए, ज़रा देखिए ना।

ला हासिल ही सही वो मोहब्बत तो है, ला हासिल ही सही वो मोहब्बत तो है, उसे एहसास हो ना हो मोहब्बत तो है। वो मेरा नहीं ये हकीकत सही, मगर दिल में अब भी वही चाहत तो है। ना मिलने का गम है ना खोने का डर, ना मिलने का गम है ना खोने का डर, उसे याद करने की आदत तो है। हमें उसने ठुकराया कोई बात नहीं, हमें उसने ठुकराया कोई बात नहीं, मगर दिल में उसकी हसरत तो है।

0: सुनिए जरा, देखिए ना, हम आपकी दीवार के साए में बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत, मेरा मन चाहा गीत, आपका मन चाहा गीत, आपको बहुत अच्छा लगा है ना जी। आपका मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही के लिए था, और सुनते रहिएगा, तमाम गीत आप ही के लिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे से भाई हीरा खान जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आपने अपनी बहन को दुआओं से नवाजा, और अपने तमाम दोस्तों को याद फरमा रहे हैं, और सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और बहुत बहुत सी दुआएं दे रहे हैं। और आपने अपने तमाम दोस्तों को, जिनके नामों की लिस्ट हम अगले घंटे में आपके इस हवा के दोष पर नशर करेंगे, उन सब दोस्तों को जो भी सुन रहे हैं, दुआएँ भेजी हैं, सलाम भेजा है, और जुमा की दिली मुबारकबाद पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपका आना हमेशा हमें अच्छा लगता है, और आप हमेशा हमारे साथी होते हैं, हमारे हम सफ़र होते हैं, और ये सफ़र आप ही के संग संग आगे बढ़ता है। आपने ढेरों दुआएं भेजी हैं हमारे भाई तारिक सुल्फी भाई के लिए, तो हम भी दुआ करते हैं कि तारिक सुल्फी भाई के लिए भी, और अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त थोड़े से, वो कहते हैं ना कि डाउन है, थोड़े से डाउन है, उन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशियों से माला माल कर दे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और मिस्टर मिसे हुसैन आपके मैसेजेस भी मिले, बहुत शुक्रिया, आप भी हमेशा की तरह हमारी साथी हैं, हमारी हम सफ़र हैं, और हमारे साथ साथ हैं, साथ का, प्यार का, और दुआओं का शुक्रिया। अब ऐसा है कि ब्रेक आन पहुंची है, ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आएंगे आपके पास।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692378.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

मेरे मित्रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीतरे। मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़, दिल को मोह लेने वाली आवाज़, हमारे दिल में बसी हुई आवाज़ जिसे हम सुबह शाम सुनते हैं और जब भी सुनते हैं बार बार सुनते हैं। बहुत ही प्यारा गीत था, सदाबहार गीत, सदाबहार आवाज़ और सदाबहार आप लोग जो कि हमें याद करते हैं, अपनी दुआओं से नवाजते हैं। अच्छा लगता है आपका आना, हमें बहुत अच्छा लगता है। नदीम मंसूर भाई, खुश आमदीद, वेलकम, जुमा की बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छा लगा आपने छोटे भाई से बातें करके, बहुत ही अच्छा लगा। आपने तमाम दोस्तों को, सनराइज़ की तमाम टीम को और तमाम सामीन को ढेरों दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए भी दुआएं हैं और आपकी फैमिली के लिए भी। आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे और हमारे दिलों को बहलाते रहे। जी हाँ जी, अपनी प्यारी प्यारी मीठी सी आवाज़ के साथ जब भी आते हैं तो अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है। हमें ही नहीं, हमारे तमाम सामीन को भी और हमारी सनराइज़ की टीम भी आपकी आवाज़ के शहदाई हैं, दीवाने हैं आपकी आवाज़ के। सुनते हैं तो चैन आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, दुआओं का, साथ का, आप हमारे साथ हैं। अब हमें और क्या चाहिए, सफ़र तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि हमारे साथ आप सब हैं।

0: तुम्हारे हिज्र के रोने से हट के रोएंगे, तुम्हारे हिज्र के रोने से हट के रोएंगे, हम अपने जाती दुखों से निमट के रोएंगे। जहां में कोई भी कांधा नहीं मिला हमें, जहां में कोई भी कांधा नहीं मिला, सो हम बरोज़े हशर खुदा से लिपट के रोएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना लता जी की आवाज़ में, और ब्रेक टाइम भी आन पहुंचा है, करीब करीब 3 मिनट बाकी हैं। तो ऐसा है कि टाइम चेक भी करना है, तो इससे बेहतर है कि हम आपके पैगाम आप तक पहुंचा दें। मिस्टर हुसैन, आपका मैसेज मिला, आपने कहा कि अभी तक जो भी गीत हमने लगाए आपको बहुत अच्छे लगे, आप हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। आपने हमें दुआएं दी हैं, सनराइज़ की टीम को ढेरों ढेरों दुआएं दी हैं, और इसके साथ साथ सामेईन को भी दुआओं के साथ साथ जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके साथ साथ समीना जी, आपका मैसेज मिला, आपकी तमाम सहेलियां आपके साथ हैं, और आपने कहा उन तमाम के लिए भी आपने गीत सुनना चाहा है, और उन तमाम को जुमा की मुबारकबाद पेश की है, सनराइज़ की टीम को जुमा की मुबारकबाद पेश की, और सामीन को भी ढेरों दुआएं दी हैं, और दिली मुबारकबाद जुमा की आपने कहा है कि हमारी जानिब से तमाम सामीन को दे दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसके अलावा हिना शौकत, आपका मैसेज भी हमें पहले घंटे में मिला था, बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, आपने भी ढेरों दुआएं दी हैं सनराइज़ की टीम को, हमारे सामीन को, और हमें भी इसके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें। आपने उस्मान को और इजाज़ को दुआएं दी हैं, शौकत भाई को दुआएं दी हैं, और उन सब के लिए गीत भी सुनना चाहे, इंशाल्लाह आपको गीत भी शुरू सुनवाएंगे। यादावरी का, दुआओं का, साथ निभाने का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसा करते हैं, टाइम चेक करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और फिर आते हैं आपके पास।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 11:44, और लेते हैं ब्रेक, आते हैं ब्रेक के बाद।
2: Sunrise Radio.
3: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and Maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
4: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

जाने चमन जाने बहार तू एक है और नाम हजार। किशोर कुमार की मध भरी आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आप सुन रहे थे सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा डीबी के जरिए आप सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, लीड्स, केटली, इल्कले, स्किप्टन, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नी, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं दो बजे तक। जी हाँ जी, पुराने सदाबहार गीतों के साथ यादों का सफ़र है। आप हमारे हम सफ़र हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका साथ और आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। पहला घंटा ख़त्म होने को आ रहा है। आप तमाम साथियों से बातें करना अच्छा लगा, आपसे मुलाकातें करना अच्छा लगा। चंद कॉलें मिस हो गई। एक तो कॉलर्स हैं जिनके लास्ट थ्री डिजिट्स हैं 131, आप ऑनलाइन पे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी आपके पास आते हैं हम। और ज़मान भाई, आपने भी दो बार कॉल की, आपकी कॉल मिस हो गई क्योंकि मैं दूसरी कॉल पर थी, तो माजर चाहती हूँ आपसे भी। अगर आप दोबारा करें तो हमारे पास वक्त है, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। यादावरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमें ये एहसास हो गया है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का और हमें याद करने का। तो चलते हैं, आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत। ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को, जी हाँ जी, हम सबको गाना पड़ता है। मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, दिल पे कैसी ही मुसीबतें आफतें मुश्किलात हो, हमें हंसकर जिंदगी को सहना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है और लोगों से अपनी तकलीफों को छुपाना पड़ता है। यही जिंदगी है।

0: जिंदगी एक वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारी आवाज़ में, लता जी की आवाज़ में ये आपने सुना सनराइज़ रेडियो पर। और आप जानते हैं कि सनराइज़ रेडियो को आप सुनते हैं 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा डीएबी के जरिए भी बहुत से शहरों में, जैसे कीटली, इल्कलिक, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नी, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में आप सुनते हैं। और इसके अलावा 100.6 एफएम पे वेस्ट यॉर्कशायर में कालदेड के इलाके में और उनके इर्द गिर्द के जितने भी छोटे छोटे इलाके हैं उनमें आप सुनते हैं सनराइज रेडियो को। और गूगल ऐप और एप्पल ऐप के जरिए भी आप सुन सकते हैं और वेबसाइट पे सुन सकते हैं। इसके अलावा सनराइज पे और बहुत ही धूम धड़क का शगल मेला होने वाला है। अगर आप जो सनराइज का फ्री ऐप है, यानी कि सनराइज के रेडियो पे जो अगर आप सुनते हैं सनराइज को, तो इसमें और भी इसमें इसको इंजॉयबल बनाना चाहते हैं और इसके जो मेंबर्स एक क्लब मेंबर बनना चाहते हैं तो फ्री में आप बन सकते हैं। फ्री मेंबर्स बनने से आपको बहुत से फ़ायदे होंगे, जो भी अपडेट्स होंगी, न्यूज़ होंगी और जो भी सेलिब्रेशंस होंगी और जो भी अवार्ड्स वगैरह आने वाले जो होंगे, उन सब के बारे में आपको सबसे पहले न्यूज़ दी जाएगी। आपको सबसे पहले, इससे पहले कि दुनिया जाने, आप जान जाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे सनराइज पे क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है। इसके लिए आपको फ्री मेंबर्स क्लब मेंबर्स ज्वाइन करना होगा, जो कि फ्री में है। www.sunriseradio.pe अगर आप जाएं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से फन और गेम शुगल मेला होने वाला है। आप गेम्स खेल सकते हैं राज के साथ, कम बैक रेस बैक टू द स्टूडियो एंड सनराइज रेडियो स्टूडियो रुश, जिसके ज़रिए से आपका नॉलेज जो है ना वो हम टेस्ट करते हैं। मैं नहीं टेस्ट करूँगी, राज टेस्ट करेंगे और आप जानना चाहेंगे कि आप जो बॉलीवुड के सितारे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं और आप क्या समझते हैं कि आपको किन सितारों से मुशाबत है। और अगर आप और अगर आप भी उनसे कोई मुशाबत रखते हैं और इन गेम और फन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको हमारा फ्री में मेंबर बनना होगा। बढ़ेंगे आप खबरों की जानिब और खबरों के बाद आपसे मिलते हैं और थोड़ा सा गले को भी तरोताजा करते हैं। आइए सुनते हैं खबरें।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio. On the hour, every hour. This is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at midday, an inquest has heard how a three-year-old child went missing before being found dead in a pond in Suffolk. The family of Noah Woods has also paid tribute to the happy, cheeky boy. Matt Steele has more.
3: A coroner's been told Noah left a playground through a gap in the fence last week. A relative had tried to follow but couldn't keep up. It prompted a search involving hundreds of volunteers. Meanwhile, his family has described how he brought joy and, despite having delayed speech, was just starting to find his little voice. His mum's urged parents to hold their children a little tighter.
2: Far-right activist Danny Tomo has pleaded not guilty after a video appeared to show him slashing at a dinghy in the English Channel. Supporters have gathered outside Basingstoke Magistrates Court, including fellow activist Tommy Robinson. 23,000 workers at Glasgow City Council are being fired and rehired after talks with unions over an equal pay dispute broke down. It will affect all non-teaching staff, with around 1 in 10 seeing their wages reduced, in some cases by almost £11,000 a year. Unison says it's a shoddy deal, but Colin Edgar from the local authority says it's needed to end a discriminatory pay structure.
4: All of the people will be re-engaged. It will not affect their continuity of service. It won't affect their pensions. Their contract will change at midnight on the 31st of December, but we value the work that people do, and people in this city need those people doing that work.
2: A police force has been hit by a cyber attack which may have resulted in staff information being compromised. The Dafydd Powys force says the incidents caused disruption to some non-emergency systems. Experts say a new brain tumour test could reduce diagnosis rates from weeks to days. It's claimed the rapid DNA analysis has the potential to transform treatment. And Taylor Swift's addressed critics of her relationship with husband Travis Kelce in a new song named after his hometown. The lyrics in Cleveland say, "Hate all you like, this is the love of my life." That's the latest. I'm Tanya Snuggs.

दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा, क्या करूं, जो कभी ना था हमारा है हमारा, क्या करूं। साहिर गुल खान की आवाज़ में, जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत सा हिट ऑफ द आवर आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, डीएबी के जरिए, ब्रैडफोर्ड, कीटली, इल्क्लिस, किप्टन, लीज, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में आप सुन रहे हैं शहनाज मंसूर के साथ यादों का सफ़र। आप हम सफ़र हैं और बहुत से साथियों के कॉल्स मिस हो गए हैं, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। 131 जो ज़ीरो था उनकी कॉल भी मिस हो गई, 130 की भी कॉल मिस हो गई, और इसके अलावा हाजरा जी आपकी कॉल भी मिस हो गई, जमान खान आपने दोबारा की थी कॉल वो भी मिस हो गई। माजरत चाहती हूँ आप तमाम साथियों से। अगर आप दोबारा आना चाहें तो आपके पास टाइम है तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी, माजरत चाहती हूँ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आन पहुँचे हैं, आप सभी का खैर मकदम है, खुश आमदीद, जी आया नू, वेलकम, गुड आफ्टरनून और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो एक बार फिर से आपको। आप साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि अपना कीमती वक्त हमें नवाजते हैं, अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे हमें देते हैं, हमारे लिए वो सर आंखों पर होते हैं, हमें उनकी बहुत कदर होती है, बहुत इज्जत है आपकी हमारे दिलों में कि आप अपना कीमती वक्त जो है वो हमें देते हैं, चंद लम्हे देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी को किसी के लिए भी टाइम नहीं होता। लेकिन आप अपनी मसरूफियत के बावजूद हमें अपनी दवाओं से नवाजते हैं, अपनी खैरियत का बताते हैं और हमारी खैरियत हाल अहवाल पूछते हैं, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप हमेशा हमेशा हमारा साथ देते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, और आपका प्यार और मोहब्बत ही है जो हमें यहाँ लेकर आता है। मेरी लगती किसे ना वेखी ते टुट दिनू रब जानदा, रब ते जानदा पर सब जानदा है।

0: वेला होया माही अज तेरे आन दा मेरी लगदी किसे ना वेखी ते टूट दे नू सब जानदा जी हाँ जी वो तो होता है ये बिल्कुल सच्ची बात है प्यार तो चोरी चोरी हो जाता है लेकिन जब टूटता है ना तो आवाज सबको आती है बहुत ही प्यारा सदाबहार गीत और शमशाद बेगम की खूबसूरत आवाज में आपने सुना और ऐसा है कि इस घंटे में आपकी डेडिकेशंस होती हैं और आपके पैगामात भी होते हैं और वो हमें ज़रूर ज़रूर आपके साथियों तक आपके दोस्तों तक आपके चहेतों तक पहुंचाने हैं लेकिन ऐसा है कि टाइम भी चेक करना है और हमें छोटी सी ब्रेक भी लेनी है ब्रेक के बाद ये सिलसिला शुरू करते हैं क्यों क्या ख्याल है शुक्रिया अदा करूंगी प्यारी सी बहना हाजरा जी आपने दोबारा कॉल की बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके आप खैरियत से हैं आपकी फैमिली खैरियत से है और सभी ने दुआएं भेजी हैं हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहू का शुक्रिया और आपके प्यारे प्यारे पोते और पोती के लिए ढेरों दुआएँ हैं आपके लिए हमेशा दुआएँ हैं कि अल्लाह पाक आपका साया हमेशा अपने बच्चों पर सलामत रखे और यही प्यार मोहब्बत जो आपका अपने बच्चों के साथ है और आपका बच्चों के आपके साथ वो सभी के बच्चों के दरमियान माँ बाप का जो प्यार है ना ये सलामत रहे ताकि आमद रहे और माँ बाप को बच्चों की खुशियाँ अल्लाह पाक नसीब करें बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यार और मोहब्बत के साथ आते हैं और बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ अपने बहू बेटे को याद करते हैं और उन्हें दुआएं देते हैं तो बहुत खुशी होती है कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके बहू बेटे आपको इतना प्यार देते हैं इतनी इज्जत देते हैं तो हमारा भी दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है और उनके लिए भी दुआएँ होती हैं और आपके लिए भी बहुत शुक्रिया याद आवरी का अच्छा लगा आपसे बात करके और इसके अलावा बात जीत कौर बहना से भी हुई हमेशा की तरह अच्छा लगा आपसे भी बातें करके आप हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हैं आप जब भी मुस्कुराती आती हैं तो मेरा दिल भी बाग बाग हो जाता है क्योंकि जब आप उदास होती हैं तो मुझे भी आप उदास कर देती हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हमारे भाई को बहुत मिस करती हैं लेकिन वो तो चले गए लेकिन हमें अभी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और हिम्मत और सब्र के साथ गुजारनी है और उनकी अच्छी यादें जो हैं उनके साथ गुजारनी है बस उनके लिए दुआ क्या करते हैं हम भी आप भी कीजिए और इंशाल्लाह खुदा आपके साथ है आपकी फैमिली आपके साथ है और हम आपके साथ हैं याद आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया आपने याद किया आपने प्यार दिया आपने दुआएं दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी हाँ जी हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 12:15 जी हाँ जी एक सेकेंड बाकी है हो गए 12:15 हो गए 12:15 हो गए हैं और हम लेते हैं ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद आपके पास
1: 24 hours a day. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358.

जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सदाबहार गीत आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है, आपके जो है वो क्या कहते हैं डेडिकेशंस, आपके डेडिकेशन का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आपके पैगामात भी हम आपके दोस्तों तक आपके साथियों तक पहुंचाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं अपने तमाम साथियों का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमें हमारे अपनी दुआओं से और प्यार से नवाजा। बहुत अच्छा लगा आप तमाम से बातें करके, आपसे मुलाकातें करके, आपकी खैरियत जानकर बहुत ही अच्छा लगा। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और आपने दुआएं भेजी हैं हम सब के लिए, जिसके लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ख़ास तौर पर अपने भाई हीरा खान जी, आपने आज सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में शिरकत की थी, आपको खुश आमदीद वेलकम करते हैं और आपकी तमाम टीम को भी जिन्हें आप हमेशा याद करते हैं और उनके लिए दुआएं भेजते हैं। ख़ास तौर पर आपने दुआएं भेजी हैं अपने भाई तारिक जुल्फी भाई के लिए, हमारी भी दुआएँ। तारिक जुल्फी भाई आपके साथ साथ हैं और आपकी फ़ैमिली के साथ हैं, आप हमेशा सलामत रहें, आपका साया आपकी फ़ैमिली पर आपके बच्चों पर हमेशा कायम दाम रहे और हमें भी आपकी दुआएँ मिलती रहें। आपके लिए दुआएं भेजी हैं हमारे भाई हीरा खान जी ने और आपने हीरा खान जी ने आप सबके लिए गीत सुनना चाहा है। आपके दोस्तों में शामिल हैं वाजिद हडिसविल में है, चौधरी मुजफ्फर है, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल में है, महबूब इलाही है, इसके अलावा चौधरी फरियाद है, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, शकील भाई बर्लिन में हैं और नवीद राना भी हैं, चौधरी वलायत खान भी हैं, तारिक भट्ट हैं, तकियानी मुदस्सर हैं, परवेज खान हैं और आमिर शहजाद और जितने भी दोस्त इस वक्त आपके इस हमारे सनराइज़ की नशरात को सुन रहे हैं उन तमाम के नाम। ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप तमाम के नाम और मुझे उम्मीद और यकीन है कि मेरे प्यारे से छोटे भाई, जी हाँ जी, नदीम मंसूर भाई, आपको ये गीत भी अच्छा लगेगा। आने वाले गीतों के साथ भी मोहम्मद रफ़ी के जो भी गीत होंगे, मैं जानती हूँ कि आप उनके गीत हमेशा गुनगुनाते हैं, पसंद करते हैं। आपके नाम करूँगी, ये मेरा वादा है।

हाय जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, और अब आपको सुनाएंगे ब्रेक। आते हैं ब्रेक के बाद।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी निकाह सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट हर मौके को बनाए खास।

हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, जान जाने जनातन। रम पम पम, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारी मूवी से लिया गया था, जिसे आपने सुना कमर्शियल्स के बाद। खुशामदीद, वेलकम जी आयानू, एंड जुमा मुबारक एक बार फिर से आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जिनसे बातें हो रही हैं। हमारी बात हुई जमान खान, जी हाँ जी, हमारे भाई हैं, उन्होंने कॉल की, आखिरकार उनसे बात हो ही गई। बहुत बहुत शुक्रिया जमान भाई, आपने हमें याद किया, प्रोग्राम को सराहा, हमारी हौसला अफजाई की। बहुत अच्छा लगा कि आप पुराने गीतों को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपने पंजाबी के का गीत कोई सुनना चाहा है तो ज़रूर सुनवाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। खान साहब, आप भी कॉल कर रहे थे लेकिन आपकी कॉल मिस हो गई, माजरत है आपसे भी। अगर आप भी दोबारा करना चाहें तो अभी हमारे पास कुछ वक्त है, 2 बजे तक हम यहीं पर हैं, आपकी कॉल ज़रूर मसूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का। और ये आने वाला गीत जो है थोड़ा उदास गीत है, लता जी की आवाज़ में है, ये मैं सुनाना चाहूँगी अपनी प्यारी सी बहना हाजरा जी, आपके नाम करना चाहूँगी। यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी मिस्टर मिसी हुसैन, आपके नाम करना चाहूँगी। और यही गीत सुनवाना चाहूँगी मैं अभी आपको भी, और आपके साथ साथ नायला हैं, शीला हैं, कौसर हैं, नसरीन हैं, नौरीन हैं और समीना हैं, आप सबके नाम ये गीत सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया।

0: बदनाम ना होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया। बहुत ही प्यारा सा गीत था जिसे आप साथियों के नाम हमने किया। अब आते हैं एक और खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में सुनवाते हैं, और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी, जीत कौर भैना आपके नाम करना चाहूँगी, आपके साथ साथ यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी। जमान ख़ान भाई आपके लिए पंजाबी का गीत ढूँढ रहे हैं, फ़िलहाल यही गीत आपके नाम करते हैं और यही गीत हम नाम करना चाहेंगे अपने प्यारी सी बहना हिना शौकत आपके नाम करना चाहेंगे, आपकी जानिब से शौकत के नाम, इजाज़ के नाम और उस्मान के नाम करना चाहेंगे। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामीन को भी ये गीत अच्छा लगेगा। कब के बिछड़े हुए हम,
1: कब
0: यहाँ आके मिले।

0: जैसे मन चाहे दुआ बरसों आजमा के मिले। जी हाँ जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जो दुआ मांगता है वो फट से कबूल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हर घड़ी भलाई की दुआ मांगा कीजिए, अच्छाई की, खैर खैर की दुआ मांगा कीजिए। क्या मालूम किस घड़ी आपकी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह पाक कबूल कर ले आपकी दुआ। बहुत ही खूबसूरत दो गाना था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे, और अब हमें आपका टाइम बताना है।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 12:46, 46 मिनट हो चुके हैं 12 बजकर। लेते हैं ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद।
2: Sunrise Radio.
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewellers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewellers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

ढूंढ ही लेगा तुझको जोगी, जोग ये तेरा कहता है। जी हाँ जी, मसूद राना की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। पूरी दुनिया में आप हमें सुनते हैं। मैं हूँ शहनाज मंसूर, दो बजे तक मेरा और आपका साथ है। अभी तक साथ निभाने का बेहद शुक्रिया। आपके संग संग ये साथ जो है और ये सफ़र जो है आगे बढ़ रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, बहुत ही असीस सफ़र है, क्योंकि हमारे हम सफ़र बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और हमारे साथ साथ हैं। इस बात का हमें एहसास दिला रहे हैं। जिनकी कॉल्स मिस हो गई उनसे माजिर चाहती हूँ। खान साहब, आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। वाजिद, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया था इसलिए आपकी कॉलें मिस होती रहीं और हमें नाम नहीं पता था क्योंकि आपका नंबर चेंज है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका नाम जो है वो इस न्यू नंबर के साथ फिर से अपने कंप्यूटर में शामिल कर दें। बहुत शुक्रिया यादावरी का। आपने तमाम सामीन को, सनराइज़ की टीम को और हमारे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहा है, जुमा की मुबारकबाद दी है और अपने तमाम दोस्तों के लिए आपने गीत सुनना चाहा है जिनमें शामिल हैं। जी हैं, कौन है? चौधरी फरियाद हैं, सफ़ीउल्लाह हैं, शकील भाई है बरले में, नवीद राना हैं, चौधरी फरियाद हैं, तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज खान हैं, तारिक जुल्फी हैं, हीरा खान जी हैं और महबूब इलाही भी हैं और जितने भी आपके चाहने वाले आपके दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं उन सबको आपकी जानिब से जुमा की बहुत बहुत मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। और ये प्यारा सा गीत उन तमाम के लिए है और यही गीत मैं सुनवाना चाहूँगी अपने भाई, जी हाँ जी, ज़मान खान भाई। आपने पंजाबी का गीत सुनना चाहा था, ये गीत आपको भी अच्छा लगेगा और आपके साथ साथ यही गीत खान साहब आपके नाम भी करते हैं। आपसे बात तो नहीं हो पाई, आपने दो बार कॉल की लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसका हमें एहसास हो चुका है। तो ये गीत हम आपके नाम भी करते हैं। उम्मीद और यकीन के साथ हमारे सामीन भी इस गीत को इंजॉय करेंगे। दो दिल एक दूजे को दूर हो गए, वेरी दुनिया दे हथों मजबूर हो गए।

चानण भरिया रात रज रज करिए बात रात फिर नहीं आनी। जी हाँ जी, आयरन परवीन की आवाज़ में हिट ऑफ द आवर आपने सुना। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। आपको खैर मकदम करते हैं, जी आयन कहते हैं और खुश आमदीद, वेलकम, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपके साथ साथ हम आन पहुँचे हैं। आप सभी का बेहद शुक्रिया जिन्होंने पिछले दो घंटे हमारा साथ निभाया, हमें बिजी रखा अपनी बातों से, अपनी दुआओं से और अपना साथ हमें दिया, अपना वक्त हमें दिया। आपका बेहद शुक्रिया। आपके एहसान मंद हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, हमारे प्रोग्राम की जो कहते हैं जगमगाते सितारे हैं। आपके साथ साथ हमारे प्रोग्राम की जो आन शान जो बान जो है वो बढ़ जाती है। आप आते हैं तो हमारे दिल का जो दिल है ना वो गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत खुशी होती है आपसे बातें करके, आपका हाल जानकर, आपसे दुआएं लेकर, आपकी दुआएं लेने और समेटने आते हैं और आपकी दुआएं लेकर ही यहाँ से जाते हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें अपनी दुआओं से नवाजा, हमारी हौसला अफजाई की, हमारे साथी बने रहे, हमारे हम सफ़र रहे अभी तक। उम्मीद और यकीन है कि इस घंटे में भी आप हमारा साथ निभाएंगे। बढ़ते हैं खूबसूरत से गीत की जानिब। ज़ुबैदा खान की आवाज़ में है तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम करना चाहूँगी, नौरीन आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से समीना के नाम, सभिया के नाम, नायला के नाम, शीला के नाम, और मुझे उम्मीद और यकीन है कि यही गीत पसंद करेंगी हमारी प्यारी सी बहन हाजरा जी। आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा और जीत कौर बहना यही गीत आपके नाम भी करते हैं।

0: ही रहे।
1: अश्क छम छम बहे और हम चुप ही रहे। जी हाँ जी, चुप रहने में भी में ही मसलहत है। बहुत ही खूबसूरत गीत और ज़ुबैदा खान की प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में ये सदाबहार गीत आपने सुना 103.2 FM पे। बढ़ते हैं अगले गीत की जानिब। उससे पहले ऐसा करते हैं, टाइम बता देते हैं और फिर अभी ब्रेक तो अभी तक आई नहीं, ब्रेक का इंतज़ार कर रहे थे। चलिए ऐसा करते हैं, ये गीत सुनवा देते हैं। चलो जी, आ गई ब्रेक, ब्रेक आ गई है। तो ऐसा करते हैं, टाइम चेक करते हैं और फिर ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 12:01। ब्रेक लेते हैं और आते हैं ब्रेक के बाद।
3: 24 hours a day। बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Do you own a business? Then get your business seen with Sunrise Radio. Absolutely free. Add your business to the Sunrise Radio business directory and showcase your products or services to our listeners and website visitors. Whether you run a restaurant, retail store, professional service, beauty business, trades company, or something completely different, we want to hear from you. There's no charge to list your business. Simply visit sunrise.radio, head to our business directory and add your details today. Sunrise Radio, supporting businesses and connecting communities.

कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। अब बढ़ते हैं एक और पंजाबी का गीत सुरिंदर कौर की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं, और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी मिसिस कौर आपके नाम करना चाहूँगी, नसरीन आपके नाम करना चाहूँगी, फरजाना जी आपके नाम करना चाहूँगी, शकीला जी आपके नाम करना चाहूँगी, और यही गीत नायला जी आपके नाम और शीला आपके नाम करना चाहूँगी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और हिना शौकत आपके नाम भी, आपके साथ साथ मिस्टर मिस हुसैन आपके नाम भी यही गीत है। सुबह वचीरे वाले मैं कहनी हाँ कर छतरी दी छा मैं छावे बहनी हाँ। वाजिद आपके लिए भी यही गीत है।

सुबह बचेरे वाले। जी हाँ जी, सुरेंद्र कौर की खूबसूरत सी प्यारी सी आवाज में ये प्यारा प्यारा सा गीत था, टप्पे थे, माइस थे, जो भी था, आपके लिए पेश किया। मुझे उम्मीद और यकीन है कि मिसेस कौर आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी बहन मिस्टर मिसेस हुसैन आपको भी, और हिना जी आपको भी ये गीत पसंद आया होगा, और हमारे सामने ने भी इसे ज़रूर इंजॉय किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये आज बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसे मैं आप तमाम के नाम करना चाहूँगी, और इस गीत को मैं नाम करना चाहूँगी वाजिद आपके नाम करना चाहूँगी, जमान खान भाई आपके नाम करना चाहूँगी, और आपके साथ साथ यही गीत नदीम मंसूर भाई आपके नाम और आपकी जानिब से दीबाबाजी के नाम, सादिया जी के नाम, शाजिया के नाम, और हाजरा जी के नाम, परवीन के नाम, और नदीम मंसूर भाई आपके नाम है हमारी जानिब से, और आपकी जानिब से तमाम आपके दोस्तों के नाम, सामीन के नाम, जो भी सनराइज़ की नशरियात को सुन रहे हैं। और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी आपके नाम, और आपके साथ साथ आपकी तमाम टीम के नाम, तारिक

रफ़ी के नाम ही और महबूब इलाही के नाम, बाबा जानी के नाम, मलक इसहाक के नाम, अयूब चौहान के नाम, जावेद मीर भाई के नाम, चौधरी आसिफ रियासत है उनके नाम, सुल्तान महमूद भाई कराची वाले उनके नाम, चौधरी फरियाद के नाम, सफ़ीउल्ला भाई के नाम, शकील भाई बरले में है उनके नाम, तारिक भट्ट के नाम, कियानी मुदस्सर के नाम, परवेज़ ख़ान के नाम और आमिर शहजाद के नाम। हम सब का मन पसंद गीत है, आइए हम सब मिलकर इसे इंजॉय करते हैं। आज मौसम बड़ा ही बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, आने वाला आ चुका। नदीम मंसूर भाई आपके लिए खास तौर पर।

0: आज मौसम बड़ा ही बेईमान है। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत गीत, हम सबका मनचाहा गीत, मनपसंद गीत आपने सुना, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। आप ही के लिए था, आने वाले गीत भी आप ही के लिए होंगे। प्रोग्राम को ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं और हमारा मान है। तो बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और आते हैं इस ब्रेक, छोटी सी ब्रेक के बाद।
1: 24 hours a day. Sunrise Radio. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

जिन्हां राहां दी मैं सार ना जाना उन्हें राहें वे मैं मुड़ना पिया। जुत्ती कसूरी पैरी नपूरी, बहुत ही खूबसूरत सदाबहार पंजाबी का गीत सुरिंदर कौर की खूबसूरत सदाबहार आवाज़ में आपने सुना 103.2 FM पे। अब आते हैं कौर डेडिकेशंस की जानिब और ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, इसे हम सुनवाना चाहेंगे, नाम करना चाहेंगे जीत कौर भैना आपके नाम करना चाहेंगे और आपके साथ साथ यही गीत नदी मंसूर भाई आपके नाम और यही गीत खान साहब, जी हाँ जी जमान खान साहब आपके नाम करना चाहेंगे, खान साहब आपके नाम करना चाहेंगे, वाजिद हुजसफील से आपके नाम करना चाहेंगे और मुझे उम्मीद और यकीन है कि हीरा खान जी आप इस गीत को पसंद करेंगे और आपके साथ साथ यही गीत हम सुनवाना चाहेंगे। रुखसाना जी आपको और आपकी तमाम टीम।

चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जी हाँ जी, शम्मी कपूर के डांस ने और मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ ने पूरी दुनिया को हिला डाला। बहुत ही खूबसूरत शौख चंचल सा गीत था और ऐसा लग रहा था कि पूरा स्टूडियो नाच रहा है। बहुत प्यारा गीत था, बहुत ही दिनों के बाद सुनने को मिला। मुझे यकीन है कि आपने भी इंजॉय किया होगा और क्या ही कहने इस मूवी के भी और इस आवाज़ के भी और इस अदाकार के भी, शम्मी के भी कपूर के। बहुत ही खूबसूरत मूवी से लिया गया खूबसूरत सा गीत आपकी खूबसूरत समातों तक हमने पहुंचाया, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अब एक और खूबसूरत सा गीत है, ये भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, इसे भी सुनवाते हैं, आप सबके गोशे गुजार करते हैं और आप सबके नाम करते हैं। नहीं, ये वाला गीत तो मैंने नहीं लगाना था, जो गीत लगाना था वो ये है, थोड़ा उदास है लेकिन चलिए सुनते हैं आज इसे।

बता दो क्या लाना, तुम लौट के आ जाना। बहुत ही खूबसूरत गीत लता जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे। ये सनराइज रेडियो है 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में, और डीएबी के जरिए आप हमें सुन रहे हैं। जी हाँ जी, ब्रैडफोर्ड, कीथली, हिलक्रेस्ट, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में 100.6 एफएम पे आप हमें सुनते हैं। वेस्ट यॉर्कशायर में और अक्रॉस कैल्टनडेल में, इसके अलावा 100.3 2 FM पे आप सुनते हैं हमें सनराइज रेडियो पे। मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ थी 11 बजे से लेकर अब जो है तीसरा घंटा भी अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है, सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमसे बातें की, हमसे मुलाकातें की, अच्छा लगा आप तमाम से बातें करके, और जिनसे बात नहीं हो पाई उनसे माजत चाहते हैं, और जो नहीं आ सके उनको हमने बहुत मिस किया। कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में ज़रूर आपसे बातें होती रहेंगी। अगले हफ्ते हम नहीं आ पाएंगे किसी ज़रूरी अपॉइंटमेंट की वजह से, तो बहुत जल्द आपसे फिर से मिलेंगे इसी मकाम पे सनराइज रेडियो पे, आपसे हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो प्रोग्राम का ख़त्म होने को है, आपसे इजाज़त लेनी है, अपनी दुआओं, आपकी दुआओं के साथ यहाँ से जा रहे हैं और अपनी दुआएं आपके पास छोड़े जा रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों के साथ साथ रहें, खैर बांटते रहें और खैर समेटते रहें, ये हमारी दिली दुआ है। रिश्ते सलामत रहें और यादें बाकी रहें, तो हमारी और आपकी मुलाकातें भी होती रहेंगी सनराइज रेडियो पर। फिर मिलेंगे जब खुदा को मंजूर हुआ। अगली मुलाकात तक आप सबका और हमारा अल्लाह ने निगेबान, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, खुदा हाफिज, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय द वेदर एंड एंजॉय द वीकेंड एंड एंजॉय द ब्रैडफोर्ड।

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 FM ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम, स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 FM, इसकी फ्रिक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग-अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है, यह हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

ओके सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज़ आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि चार दफ़ा छः, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

राइट जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल करें 01274306666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से, या फिर उनको हम मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर घुंस गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274306666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

0: राइट, आपकी कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी हैं, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत माजरा चाहता आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।
1: मस्कीन लोहार आज कुछ याद है जी, तोता विद्या हो के माँ कोलू आवे कोल रानी सम्मी दे, आके जवाब करदा रानी सम्मी की आखदी, ओते तोता की आखदा, अला भाई फतेह मंदा लोहार दे शिगिरदा की आखदा।

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, या आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रब्ता हमसे रब्ता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once in a lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक ज़ुबान होती है, और वो ज़ुबान होती है कि किसी भी ज़ुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की ज़ुबान होती है। मोहब्बत की ज़ुबान वही होती है जो आपकी मादरी ज़ुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी ज़ुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हों। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूज़िक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

बेजार हैं या आपको किसी चीज में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें

हमसे जी आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं, तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव, लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है, हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ, वो मशवरा मुफ्त है, और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा। और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा, उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है, वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का इख्तिताम। ओके, यहां पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि इख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां गलियां घूमी ते पैरें जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
6: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है।

रखती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

0: उम्मी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

हेलो, नानावती हॉस्पिटल आ रहा हूँ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जे हॉस्पिटल आ रहा हूँ, मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी। हाँ,